देवा हिंदु एवरेम बुने थे त्या बैमी हुंगे का बफाइंग अलुकं कों उलुन थके थे त्या बैमी हुं एक्की बा कुरुमा कस्तु खोग्यं उड़े मी हैव कम गा मेनुई मीना एबही रसूला नुए आदि एवरेम बुने थे अमिल्यं उफद्दा फावा दोगे कम गा मेनुई मी कुरुआन नुए आदि एवरेम ना हक कुरुआन आ हिंदु ए कुरुआना में दु काफिर मी हुं बुनुए फालु वेगेम्वा जादू खमगा मेनवी मे कुरआन वे।

वाश हम आकाश वरुण थिमंगे वेरी रस कलांगे हाको गई फनुवते एकलांगे गायब थम मोला दिन वड़गिम वा रस कलांगे।

0: फुला कुर्मटा का हिदमे फुला कुर्मटा का बेन वा जाग तनवस कुर्मटा का बेन वा ही तेरी कन सरकार के फरा तुम यार हम सवाद वफा वाकन कार्डिक सेंटर वणी हा मकुर वफा आई जी एम एचम मरियम वफा पीएसएम न्यूज
1: कार्डियक सेंटर के सबब इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल आईजीएम चकुरा इतबार बड़ फावाकम माले सिटी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के सीईओ इब्राहिम अब्दुर्रज़ाक हलीम विदार विज नेशनल कार्डियक सेंटर दिहा अहर फुरम के मुनासबतुगा बेवी रस्मियातुगा वाहक दकमुं माले सिटी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के सीईओ इब्राहिम अब्दुर्रज़ाक हलीम विदारवी ए सेंटर के खिदमे फेशी दुआ हुं फेशगें नेशनल कार्डियक सेंटर की माले सिटी ग्रुप के दशों हिंगा एम्मे कामयाब एम्मे खास इत्तंकम ए सेंटर के मसकत की नमूना खिदमत कम फाहा कुरवा अब्दुर्रज़ाक विदारवी ए सेंटर के खिदमत के फेवर रंगलवम के नतीजा की आमुगे इतबार गायम कुरवं कम अब्दुर्रज़ाक विदारवी ए सेंटर आय को कार्डियो वस्क्युलर खिदमत तो के फेवर ए त गुणें उफुदे राज्य का तिबेगिन हितु के बलित का फरवा दिनम के फुर्सत फाही वफाव मकी बलमी हुन लिबुनु लुइफसे है कम ए सेंटर मिहातर बोडेति कामयाबी तकें हासिल को फावा कमशा कुरियावेस मुहिम अमाज तकें हुरी कमंग अब्दुर्रज़ाक दारवे हेतु के बाले मीहुन राज्य बेर फुनवंच हे निस्पे दक्कुरेवमा गाबिल मीहुन बिना कुरुमगा ए सेंटरुं मुहिम दावरें अदा कुराकम रज़ाक विदारवे जपानु राज्य अन्न फतुरवरिंग अदद इतुर कुरुम जपानु के ट्रेवल एजेंटुंग एसोसिएशन मशवरा कोफे मि मश्वरात कुरियगिंगुस्फावणी राज्य जपान कणाळवाफा हुन्नवा सफीर अहमद महलोफ जपान के ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन के रईस आयकु बेवी बत कुरेवुमगा राज्य जपान कणाळवाफा हुन्नवा सफीर अहमद महलोफ वणी जपान एसोसिएशन ऑफ ट्रेवल एजेंट्स जाटा के रईस कुनिहर एबिनाया बत कुरेवाफा मि बद्दवुमगा देगवुमगे देमेदुगा फतुरुवेरकमगे गुळुं इतुरं हर्दना कुर्मा मश्वरा कोफावाकम सफीर महलूफ दाळवे मि मश्वरातवगे तफसील हिस्सा कुरव्वा सफीर महलूफ मिस मीडिया गा हिस्सा कुरवि पोस्ट गा विदाळवे जपानु राज्यान फतुरुवेरिंग अददु इतुरु कुर्मशा जपान मार्केटुगा राज्य इश्तिहार कुरुं इतुर फुळा कुर्मा मश्वरा कुरवुनु कबा अदि जपान के ट्रेवल एजेंट उन्ना राज्य के ट्रेवल एजेंट उन्ना इतर गुड़ बदहे कुर्मा मश्वरा कुरवुन कम सफीर महलूफ दारवे सफीर महलूफ पोस्ट निम्म वाले वे बदवुम के थिरें राज्य जपान आते में तो फतुरुरिकम के दायराएं इतर गुड़ बदहे वाने कम उम्मीद कुरवा कम विदारवमुं फेनक कुंफुनी के कुरिये मैनेजमेंट तवगा हिंगा फाहुरे प्रोक्यूमेंट गुलुं हुरे मसल तवगे सबबुं याद नुकुरवे वरुगे गेल्लुं लिपाय बहुरे कमा फेनका के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद आफीफ हुसैन विदार विच कुंफुनी के इतबार अलुं याद कुरुमा फेनका के प्रोक्यूमेंट पॉलिसिया मुहिम वदा तके गेनन चेहे कमं एमडी फाहा कुरवे तफसील हालिमत्रीशा
2: PSM News ada winterweka Fenakaage Managing Director Muhammad Afif Vidalvi Kurige Management takun khunfun natakiti hodum ga aikashige waamin wara bala fanuum ge sababun wara gina latita ka kurimati waakama takuraar kon et tane maramat kuran jehuma harad boduum fada masal ta dimawa kama Vidalvi khunfuni ge beenuman hoda fa hori bai takiti ge fenwar davwegen khunfuni ge engineer management ke samal kama ekang ginas fa waakama wes MD Vidalvi कुंफुन्यंग एम फायदा हुरी गोतुका अमल कुरम के बदल गा अमिल मसलाता एहेम बाय फरायतो के मसलात इसको गें मी के कुरिम फेन का तेरे का मसे के कुफा वाकम विस एम डी वी दारवी एका मजली होगे कमा गुरुं हुई कमिटी तो के समाल कम विस एस फावाकं एम डी फाहग कुरेवी कुंफुनी के इतबार अलों याद कुरम फेन के प्रोक्यूमेंट पॉलिसी मुहिम बदल तक गेन जे कम एम डी आफीफ वनी विदार वेफा फेनकाय गमसक्कत बेनु वातकित होदुमंग एब्बस वफावा कुंफुनी तकों फासायंग एदेरु कुंफुनी फोर को दिन तके चकी फेनकाय बेनु वा फेनवरा फेते तके चनुवा कं बाय फारफा कुरवे कमशा बाय हालत का एब्बस उमा एगुता तकेति फोर को दीफा नुहुन्न कम वेसविदाळवी फेनकाय की असासी खिदमत दे कुंफुन का वायर फेनवरो दत तकेति फोर को दिरमा गडिया तकेति नुदिबुमकी आम रयतु न फोर को दे खिदमत एगे सीधा असर फोरा कम कं अफी फणी फाग कुरवाफा प्रोक्यूमेंट मरहला गा हिंगा करप्शन आ फसाद गे अमल तक हुळवे फा इदरु एक्को बंद कुरान कम वे साफी फनी विदाळवे फा रेसल जमहुरी आ डॉक्टर मोहम्मद मोइज गे इरशाद आय गता फेनक कुंफुनी गे हिंगों हरदना कुरमा कुरमंदा मसकत गे तेरें प्रोक्यूमेंट उसूल बदल गेनस ए निजाम

0: मुन्ना को बाकी है ना क्या देड़ा ही है
1: अल्हम्दुलिल्लाह मुन्ना रंगल खालो में देड़ा ही है
0: अफनस देड़ा ही है मुन्ना मुन्ना कोम वड़ा में क्या दक्का फ़ोंग अता
2: मुन्ना थी है बुरको वेन्ना हिंग कमेन्ने अफन थी कंको लन्ना
1: तिको तुम हाउ दहाई रंगल लाए तिहं मुन्ना एक ही आहो हाल बला फे मुन्ना रकां कंको देन्ना है दी मुन्ना वरहा उपावे

0: வா வா வா ஹோமா. ஆமாம், வர சழுங்கி. ஹோமா ஹமா லவே ரெக்கார்டு குரம்ப சஜே ஹீவணி.
1: ரங்கு
0: மீ கேரி புனவுணி லவேன் தங்கொழு கியால் தேசே
1: வேதான
0: விமா ஹிங்கா மசகத தமா ஹூமா
2: ফেন হলা গো জারে নদিয়ে মিকা হবে গন্দি ফান
3: হুম কোমে আহমদ আন ফাই গন্দে নে কেনে
0: খোবা হোমা কিহিনে দেম ওয়ানে
1: ফোন নুদে নে হে হিওয়ানে
0: ফোতে নুদে নে
1: আদে
0: হিঙ্গা আডুয়া হালা জবাব
1: আদে
3: তিফানি বে আহমদ হুরি মাভিয়ান বরফুইবে মিনি আদা ফোতে কেমে সুরেবরেন
2: মিহার লবি গো আ কিউন নং হেন কা নো সোয়েবি এদো অনিকা লবি রি
3: ಕಿತಾರೆ ಕೊಮೆ ಕಾಲವಾಕೆ ಕಿಯಸ್ ಆರೆಂಗ ಲೋವೆರೆ ಕುಟ್ಟಸ್ ನೂಟ್ಟಸ್ ಏಕೆ ಅಹಮದ ಕಬೆ ಹೇಕಮೆ ನೂನನ್ ಎಂಗಿಜ್ಜತ ದೆನ್ ದಿಪಣಿ ತನ ಮುರೆ ಬರ
0: ಕೋಬಾ ಹುಮಾ ಸೇನ್ ಹಿಫಾಗೆ ಹುಣ್ಣಾಶೋ ಎಹಿಮ ಫೋತೆ ನೋಲಿಬೆ ಅಂಬುರಾದೊ
1: ವರ ಪ್ರೆಷರ್ ಉಗ ಹುರಿ ನಮ ಮಮ ಕೊಂಡುದಿ ವಾಟಾಲಿದೊ
0: ವರ ರುಳಿಯಾ ಸಮಿ ಹುರಿದೊ ಕೊಮೆ ಕಸ್ ಫೊಣ್ಣುದಿಗೆ
1: ಆದೆ ಆದೆ
0: ಹಿಂಗಾ ದೇವಡ ಮಸಕತೆ ದಬ
1: ಆದೆ